सुप्रभात, आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज दिन मंगलवार, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की तिथि 23, तदनुसार 14 जुलाई सन 2026 है। इस समय सुबह के 5:58 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन।

0: FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच

पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के

9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई से नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शव स्वदेश लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू क्वॉक द्वीप पर में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर अपनी ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। यदि कोई उत्तर मेल नहीं खाता है तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन कर अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान कर चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हिंदी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिन आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में जानकारी लीजिए खरीफ फसलों की देखभाल के विषय में।

ग्रामीण श्रोता मित्रों, रेडियो दोस्त संजीव का जोहार। कार्यक्रम खेती की बातें में आज हम आपसे खरीफ फसलों की देखभाल विषय पर बातें करेंगे। भाइयों बहनों, खरीफ फसलें अर्थात धान, मक्का, सोयाबीन आदि, हमें पहले तो इन खरीफ फसलों का सही समय पर बुआई करनी चाहिए। इसके साथ ही नमी का

प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण और उर्वरकों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले फसलों के उन्नत बीजों का चयन करें। हमेशा अपने क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी के अनुसार ही प्रमाणित बीजों का चुनाव करें। बीजों को फफूंद नाशक और कीटनाशक से उपचारित जरूर कर लें। इन सावधानियों के साथ आप शुरुआती रोगों से फसलों को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, खरपतवार फसल के पोषक तत्व को और उनके नमी को सोख लेते हैं, जिससे पैदावार में 15-20% तक नुकसान हो सकता है। अतः बुआई के 20-30 दिन के बाद ही निराई गुड़ाई जरूर करें। बुआई के तुरंत बाद 2-3 दिन के भीतर पेंडा मिथिलियन जैसे प्री इमर्जेंस खरपतवार नाशकों का उपयोग फायदेमंद होता है। कोशिश करें कि जैविक खाद का व्यवहार ज्यादा से ज्यादा करें। इसलिए बुआई से पहले खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद या जैविक खाद जरूर डालें। सॉयल हेल्थ कार्ड या मिट्टी परीक्षण के आधार पर DAP, यूरिया और पोटाश डालें। धान के लिए जिंक और दलहन तिलहन के लिए सल्फर की आवश्यकता विशेष रूप से होती है। किसान भाइयों, खरीफ की फसलों में जल प्रबंधन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि खरीफ की फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन जल भराव विशेषकर मक्का और सोयाबीन में फसल सड़न की समस्या पैदा कर सकती है, इसलिए खेतों के किनारों पर उचित जल निकास की व्यवस्था करें और नालियां बना दें। इसके बाद कीट एवं रोग नियंत्रण के लिए फसल की पत्तियां और तनों की नियमित जांच करते रहें। किसी भी कीट या रोग का लक्षण दिखे तो कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेकर उचित कीटनाशक का छिड़काव भी करें। इस प्रकार हमारे किसान भाई इस समय खरीफ फसलों की देखभाल कर अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं और ज्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय की जानकारी के साथ। सभी श्रोता मित्रों को रेडियो दोस्त संजीव का जोहार।

खरीफ फसलों की देखभाल इस विषय पर अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इसी के साथ दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। अब प्रस्तुत है चिंतन। प्रेरणा पर्वत से लेनी चाहिए, जिसके मार्ग में अनेक आंधी और तूफान आते हैं मगर उसके स्वाभिमानी मस्तक को नहीं झुका पाते। प्रेरणा लहरों से लेनी चाहिए, जो गिरकर फिर उठ जाती है और अपने लक्ष्य तक पहुंचे बगैर रुकती नहीं है। प्रेरणा हमें वृक्षों से लेनी चाहिए, फल लग जाने के बाद जिनकी डालियां स्वतः झुक जाया करती हैं। और प्रेरणा उन फूलों से लेनी चाहिए, जो खिलते भी दूसरों के लिए हैं और टूटते भी दूसरों के लिए हैं। चिंतन अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। सुबह के 6:16:20 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम वंदना की शुरुआत करते हैं इस देशभक्ति गीत के साथ।

संवेद स्वरों में ये देशभक्ति गीत अभी आपने सुना। श्रोताओं, सुबह सुबह ईश्वर की आराधना करने से मन को शांति, सकारात्मक ऊर्जा और दिन भर के लिए हमें स्पष्ट दृष्टिकोण मिलता है। ये हमें दैनिक भागदौड़ से पहले खुद से जुड़ने और मानसिक रूप से मजबूत होने का हमें अवसर देती है। चलिए सुनते हैं कुछ भजन।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। वंदना में आज के कलाकार हैं लता मंगेशकर और पंडित भीमसेन जोशी। आइए सुनते हैं ये अगला भजन।

लता मंगेशकर और पंडित भीमसेन जोशी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। अब आइए सुनते हैं हरिहरण की आवाज़ में ये भजन।

हरि हरण की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये भजन, और इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 MHz पर। अब प्रस्तुत है रामचरितमानस।

अयोध्या नगरी के बाहर जनकपुर प्रस्थान के लिए बारात सजी खड़ी है। वातावरण में स्त्रियों के कंठ से फूटते मंगल गीत के स्वर गूंज रहे हैं। मंत्री सुमंत्र दो रथ विशेष रूप से सजाकर राजा दशरथ के समीप ले आए। नरेश ने एक रथ पर आग्रहपूर्वक कुलगुरु वशिष्ठ को बैठाया तथा शिव गुरु गौरी तथा गणेश का स्मरण कर स्वयं दूसरे रथ पर आरूढ़ हुए। गुरु की आज्ञा पाकर महाराज ने जब बारात को चलने का संकेत दिया तो देवगण मंगल पुष्पों की वर्षा करने लगे। समस्त वातावरण गाजे बाजे, घोड़े हाथियों के गर्जन तथा धरती और आकाश से झड़ते मंगल स्वरों की गूंज से झंकृत हो उठा। बारात ऐसी सची है जिसका वर्णन करना कठिन है। चहुओं ओर शुभ शकुन हो रहे हैं, बाएं नीलकंठ पक्षी के

दर्शन हो रहे हैं तो दाहिनी ओर खेतों में कौओं का समूह मंगल का संकेत दे रहा है। लोगों को नेवले तथा लोमड़ी के भी दर्शन हुए जो शुभ शकुन के लक्षण हैं। उधर उज्जवल धवल सिर वाली चील विशेष रूप से कल्याण का संकेत दे रही है।

रामचरितमानस सभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7 बजने वाले हैं। अब समाचार सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र फैशन स्थिरता प्रौद्योगिकी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 5F विजन यानी खेत धागा कारखाना फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार निवेश नवाचार नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता है। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई को नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15

जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाई जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। हमारा ये प्रसारण आप सुन रहे हैं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय आप आनंद ले रहे हैं प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों का। चलिए शेष कार्यक्रमों की जानकारी आपको दे दें कार्यक्रम विवरण के तहत।

श्रोताओं, आपसे थोड़ी देर बाद यानी 7:10 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज सुनिएगा अनूप जलोटा की आवाज में चंद गजलें। सात बजकर 20 मिनट पर सुनिएगा कार्यक्रम लोक गीत। बांग्ला गीतों के कार्यक्रम सुरंजलि का समय होता है सुबह 7:35। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा कुछ आधुनिक बांग्ला गान। कलाकार होंगे रूपीकांत, हिमिका, रिंकू और जयश्री। स्वास्थ्य चर्चा का दैनिक कार्यक्रम हम लेकर आएंगे सुबह 7:50 पर। आज इस कार्यक्रम में आप सुनिएगा भेंट वार्ता। विषय होगा अपेंडिसाइटिस, कारण और बचाव। इस विषय पर हमें बताएंगे डॉक्टर मनोज कुमार।

8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज का प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। इसके ठीक बाद 8:30 बजे आप सुनिएगा प्रादेशिक समाचार हमारे आकाशवाणी के रांची के।

सुबह 8:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम हम लेकर आएंगे सुबह 10:20 से।

9 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और 9:05 पर सुनेगा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरंजना। सुरंजना में आज सुनिएगा एक ही गीतकार। नौ बजकर 30 मिनट पर शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाएंगे उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब का सरोद वादन। दस बजे हिंदी में समाचार, 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 10:10 पर सुनिएगा विश्व दर्पण। दिन में 11:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर। कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM की 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

सुबह के ठीक 7:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आइए श्रोताओं, आज सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में सुनते हैं चंद गजलें। मंजिल न रही कोई, ठिकाना भी नहीं है, वापस मुझे घर लौट कर जाना भी नहीं है। राही कानपुरी की लिखी ये गजल, जिसे अपनी पुरकस आवाज दी है अनूप जलोटा ने, आइए सुनते हैं।

चौंक कर नींद से उठकर मैं बैठ जाता हूँ, ख्वाब में जब कभी बेचैन तुझको पाता हूँ। आइए अगली गजल इसरार अंसारी की लिखी, जिसे अपनी मखमली आवाज दी है अनूप जलोटा ने ही।

अनूप जलोटा की आवाज़ में गायज गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:20 हुए हैं। अब आइए श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम लोक गीत।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम लोकगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। हमारा ये प्रसारण आप सुन रहे हैं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:35 हुए हैं। अब वक्त है बांग्ला गीतों के कार्यक्रम सुरांजलि का। आइए श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं कुछ आधुनिक बांग्ला गान। आज के कलाकार हैं रूपिकांत हेमिका, रिंकू एवं जयश्री।

0: अभी आप सुन रहे थे बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि। सुरांजलि में आज के कलाकार थे रूपेकांत, हिमिका, रिंकू एवं जयश्री। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आइए श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं भेंट वार्ता। विषय है अपेंडिसाइटिस, कारण और बचाव। इस विषय पर हमें बता रहे हैं डॉक्टर मनोज कुमार और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी राजेश कुमार।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आज बातें अपेंडिसाइटिस के बारे में। अक्सर लोग अपेंडिसाइटिस का जो दर्द होता है उसकी शिकायत करते हैं। आखिर में ये है क्या और इससे फिर हम कैसे बच सकते हैं, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, अपेंडिसाइटिस होता क्या है?
2: अपेंडिसाइटिस रोग को समझने के लिए अपेंडिक्स की परिभाषा समझनी होगी। अपेंडिक्स बड़ी आंत और छोटी आंत के जंक्शन पे एक अंग है जिसका काम है वो घास को पचाने के लिए एंजाइम पैदा करना। जो जानवर घास पे जिंदा रहते हैं उसमें ये अपेंडिक्स अंग जो है फंक्शनल होता, काम करता है और वो पाचक रस पैदा करके घास को पचाता है।
1: जी।

0: लेकिन ये क्रमिक विकास के तहत जानवर से बंदर होते हुए आदमी का जो विकास हुआ, तो आदमी घास खाना छोड़ दिया तो वो वेस्टिजियल ऑर्गन बन गया, वो नॉन फंक्शनिंग ऑर्गन बन गया। अब उसमें अपेंडिक्स में अब कोई काम नहीं रहा, और इसके कारण जो है अपेंडिक्स इंसान में एक वेस्टिजियल ऑर्गन के कारण अब उसमें उसका नॉन फंक्शनिंग होने के कारण ऐसे ही पड़ा रहता है।
1: किन कारणों से लोग दर्द की शिकायत करते हैं?
0: हाँ, वो नॉन फंक्शनिंग गैर वाजिब अंग में, चूंकि वो छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन पे है, तो उसमें एक छोटे से छेद रहते हैं जिसमें पैखाना कभी घुस जाता है, या कभी उसमें पथरी बन जाता है, या कभी उसमें कोई कीटाणु घुस जाता है, तो उसमें सूजन पैदा हो जाता है और वो बैलून नुमा फूल जाता है, और तब जब फूलने पर उसमें दर्द पैदा होता है और कभी कभी वो फट भी जाता है।
1: तो कैसे लोगों को यह पता चले कि अपेंडिसाइटिस का दर्द उनके शरीर में हो रहा है?
0: अपेंडिसाइटिस के तीन प्रमुख लक्षण हैं। पहला, दर्द पेट के निचले दाएं भाग में यदि दर्द हो रहा है तो ये अपेंडिक्स का पहला लक्षण है। दर्द होने के कुछ ही देर बाद यदि पेशेंट को उल्टी आने लगे तो समझ लीजिए कि ये अपेंडिक्स का उल्टी है, और उसके 12 घंटे बाद यदि पेशेंट को बुखार आ जाए तो ये कंफर्म हो गया। दर्द, उल्टी और बुखार, ये तीनों कंफर्मेटरी लक्षण हैं अपेंडिक्स होने के।
1: अगर मान लीजिए कोई इस तरह के दर्द को नजरअंदाज कर रहा हो लगातार, तो कितना खतरनाक हो सकता है उसके लिए?
0: बहुत सारे मरीज इस तरह से दर्द हुआ तो दर्द की गोली खा के दवा दर्द को दबा लेते हैं, और फिर बुखार आ गया तो बुखार की गोली खा के दबा लेते हैं, तो इसका दुष्परिणाम अपेंडिक्स के फटने के रूप में निकलता है, जिसको परफोरेटेड अपेंडिसाइटिस कहते हैं। वो एक तरह से छोटा बम है जो पेट के अंदर फूट जाता है और आसपास के सारे अंगों को काफी डैमेज पहुंचाता है।
1: तो किस तरह की हानियां होती है आंतरिक अंगों में अगर किसी का अपेंडिक्स अंदर में अगर फट गया है तो?
0: अपेंडिक्स फट जाने पर ये जानलेवा होता है, तो छोटी आंत, बड़ी आंत और आसपास के अंगों को वो डैमेज करता है। डैमेज कीटाणु के रूप में, उसको सड़ाने के रूप में, इन्फेक्शन करा के करता है, जिसके कारण पेट के अंदर बहुत तेज पीड़ा होती है। वो डॉक्टर से सलाह लेते हैं, अल्ट्रासाउंड में जब कंफर्म हो जाता है तो उसका इमीडिएट इमरजेंसी ऑपरेशन किया जाता है।
1: अंत में एक सलाह उन मरीजों के लिए जो अपेंडिक्स के दर्द से परेशान रहते हैं।
0: जिस मरीज को अपेंडिक्स का दर्द होता है, पहले दर्द में मरीज को ऑपरेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि इसका एकमात्र इलाज ऑपरेशन ही है। टेम्पररी इलाज सुई दवाई से उसके सूजन को कम कर सकते हैं, लेकिन यदि आप ये पहली बार आपने सूजन को कम कर लिया तो दोबारे उठेगा और दर्द तिबारे उठेगा। बार बार होने वाले अटैक को अल्टीमेटली परफोरेशन होने का रिस्क है, कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क है, इसीलिए छुटकारा पाने के लिए मेरा सलाह है कि पहली बार में ही इसका ऑपरेशन करा लेना चाहिए।
1: तो श्रोताओं, आपने सुना कि अपेंडिसाइटिस का जो दर्द होता है वो हमारे शरीर के अंदर एक अंग है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं, उसके कारण से होता है। और यदि इस तरह का कोई दर्द आपके शरीर में हो रहा है तो जैसा डॉक्टर मनोज ने बताया कि तुरंत किसी सर्जन से सलाह लें और ऑपरेशन ही एकमात्र इसका उपाय है। डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

अपेंडिसाइटिस कारण और बचाव इस विषय पर अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे। भेंटवार्ता का थे डॉक्टर मनोज कुमार और इनसे बातचीत कर रहे थे राजेश कुमार। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा का ये कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455

0: 5 पर कॉल करें।
1: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 870001424।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 870001424।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर सुनिएगा मॉर्निंग न्यूज।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हुरमुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
4: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3 लाख शांति

0: स्वीकार किया। वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कुओक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। FB महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी पता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमरीका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास हुर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हुर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमरीका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
2: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों, अमरीका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और

0: दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक दिन की कार्यशाला होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौश्रुतम का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शैल्य चिकित्सा के बीच सहयोग बढ़ाना तथा शोध, नवाचार और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
2: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर-21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इससे पहले अमेरिका ने शूटआउट में भारत को 3-2 से हराया था। उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। मंदिर प्रशासन, जिलाधिकारियों और पुलिस ने सुचारू और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। नव यौवन दर्शन के साथ रथ यात्रा के पूर्व सभी अनुष्ठानों का समापन होगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। रथ यात्रा गुरुवार को पवित्र त्रिमूर्ति की श्री गुंडिचा मंदिर तक की औपचारिक यात्रा के साथ मनाई जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद फरत।
1: लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम के मैच जीतने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों में छाया हुआ है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, भारतीय बेटियों ने लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, विदेश में सबसे बड़ी जीत। वहीं जनसत्ता ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में आज सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ बीएलए 2 की बैठक और चुनाव पाठशाला का आयोजन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स से भाग लेने की अपील की। लातेहार जिला पुलिस ने 20 लाख रुपए के इनामी नक्सली रविंद्र गंजू को किया गिरफ्तार। ईडी ने 3,87,00,000 रुपए की 11 अचल संपत्ति की जब्त। श्रावणी मेले की सुरक्षा को लेकर डीजीपी तदाशा मिश्रा ने की समीक्षा बैठक। ड्रोन एआई और सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी। एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट और रिकॉर्ड किए गए उत्तर जारी किए। कल तक चुनौती की सुविधा। और राज्य में अगले 4 दिनों तक आंधी बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में आज सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ बीएलए 2 की बैठक और चुनाव पाठशाला का आयोजन होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर आज होने वाली बैठक और चुनाव पाठशाला के सफल आयोजन में सहयोग की अपील की।
1: सभी पोलिंग स्टेशन में बीएलओ बीएलए 2 का सेकंड मीटिंग, साथ में चुनाव पाठशाला भी आयोजन किया जा रहा है। मीटिंग में अभी वर्तमान में रोल में है, उसका नाम में ये एसडीडी सूची बोला जाता है, उन्हीं के बारे में चर्चा होगी। उनका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आएगी, अतः एब्सेंट है, शिफ्टेड है, बेड डुप्लीकेट, भारत का नागरिकता यहाँ छोड़कर दूसरा देश में नागरिकता प्राप्त कर लिया, तो उनका भी नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं जाएगी, उसका बारे में चर्चा होगी। फिर 22 तारीख को उसी सूची फाइनल किया।
0: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि चतरा, मझगांव, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, गुमला और लोहरदगा विधानसभा क्षेत्रों में सभी मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध करा दिए गए हैं तथा अन्य क्षेत्रों में भी शीघ्र शत प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। रांची जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने मतदाताओं से अपील की है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत घर घर पहुंच रहे बीएलओ को इनुमरेशन फॉर्म भरने में पूरा सहयोग दें। उपायुक्त ने सभी मतदाताओं, राजनीतिक दलों और मीडिया से अभियान को सफल बनाने में सहयोग की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस के अवसर पर रांची स्थित रिम्स के प्लास्टिक सर्जरी विभाग ने स्मृति क्विज प्रतियोगिता

0: और शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें वरिष्ठ चिकित्सकों, संकाय सदस्यों और रेजिडेंट डॉक्टरों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर प्रिंस गुप्ता ने प्लास्टिक सर्जरी के वर्तमान परिदृश्य, नई तकनीकों और करियर की संभावनाओं पर व्याख्यान दिए। प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर प्रियंका करकेट्टा ने कहा कि प्लास्टिक सर्जरी केवल सौंदर्य उपचार तक सीमित नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण और जटिल शल्य चिकित्सा में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। लातेहार जिला पुलिस ने 20 लाख रुपए के इनामी भाकपा माओवादी नक्सली रविंद्र गंझू को गिरफ्तार किया है। उस पर झारखंड पुलिस ने 15 लाख रुपए और एनआईए ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। झारखंड में माओवाद के वित्त पोषण से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी के रांची क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत लगभग 3,87,00,000 रुपए मूल्य की 11 अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त कर ली। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक तदाशा मिश्रा ने आगामी राजकीय श्रावणी मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रांची पुलिस मुख्यालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण, कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन तथा आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था सहित सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। डीजीपी ने अधिकारियों को संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी, ड्रोन और एआई आधारित निगरानी, महिला सुरक्षा तथा विभिन्न एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र में हुए ज्वेलर्स डकैती कांड में मुख्य साजिशकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मुकेश लुणायत ने संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी।
1: डकैती की घटना हुई थी, उस कांड के मुख्य साजिशकर्ता शमशेर आलम को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उसकी निशानदेही पर कांड में प्रयुक्त एक पिस्टल, दो मैगजीन, दो जिंदा गोली, एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल, इसी के साथ करीब 370 ग्राम सोने जैसा दिखने वाला पदार्थ, 160 ग्राम चांदी जैसा दिखने वाले पदार्थ बरामद किया गया है। इस घटना में संलिप्त अन्य सभी अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।
0: रांची में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि डोरंडा थाना क्षेत्र से 4 ब्राउन शुगर तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।
2: डोरंडा थाना अंतर्गत साकेत नगर एरिया है, वहाँ से सबसे पहले मुकेश कुमार को पकड़ा और मुकेश कुमार के पोजीशन से उस ब्राउन शुगर की पुड़िया मिली। उसके पश्चात आगे जब कंटिन्यूअसली रेड करेगी तो संदीप कुमार दांगी है, इनकी पोजीशन से लगभग 1350 पुड़िया जो है ब्राउन शुगर मिली है, तो इन टोटल 1444 पुड़िया ब्राउन शुगर पुलिस के द्वारा बरामद की गई है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट और रिकॉर्ड किए गए उत्तर जारी किए हैं। वेबसाइट neet.nta.nic.in पर आवेदन नंबर लॉगिन कर अपनी ओएमआर शीट और उत्तर देखे जा सकते हैं। ओएमआर चुनौती सुविधा कल तक उपलब्ध रहेगी। राज्य में अगले 4 दिनों तक आंधी के साथ भारी बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र रांची के वैज्ञानिक ने मॉनसून की कम बारिश में किसानों को खेती को लेकर सलाह दी है।
3: मानसून जो थोड़ा सा है वो बेरुखी भी दिखाएगा, बारिश भी होगा, तो स्थिति को देखते समझते हुए ही जैसा डायरेक्शन जाता आप उसको फॉलो कर सकते हैं और उस हिसाब से ही खेती करेंगे, जिससे कि इस सिचुएशन को हम लोग अच्छे से निपट पाएंगे। आपको प्रेफरेंस धान को ना देते हुए उसको आपको डाइवर्सिफाई करना है, अगर धान लगाना भी है तो आप निचले खेतों में उसको प्राथमिकता दें और ऊपर वाले खेतों में आप मकई है, तिलहन दलहन है, दाल है, इस टाइप का चीजें कर सकते हैं।
0: 22वीं रांची जिला सब जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2026 में

विभिन्न विद्यालयों, क्लबों और अकादमियों के 226 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में सांडा और ताउली की 35 स्पर्धाओं का आयोजन किया गया तथा विजेताओं को पदक और प्रमाण पत्र दिए गए। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने इनामी नक्सली रविंद्र गंजू की गिरफ्तारी की खबर को प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान ने लिखा है शिकंजा, 20 लाख का इनामी नक्सली रविंद्र गंजू गिरफ्तार। दैनिक भास्कर की सुर्खी है बीआईटी सिंदरी बनेगी यूनिटरी यूनिवर्सिटी, 15 दिनों में यूनिवर्सिटी सेवा आयोग सक्रिय होगा। प्रभात खबर ने लिखा है भारतीय महिलाओं की लॉर्ड्स फतेह, आज मतदान केंद्रों पर सुनाई जाएगी एएसडीडी की सूची। इस खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य में आज सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ बीएलए2 की बैठक और चुनाव पाठशाला का आयोजन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स से भाग लेने की अपील की। लातेहार जिला पुलिस ने 20 लाख रुपए के इनामी नक्सली रविंद्र गंजू को किया गिरफ्तार। ईडी ने 3,87,00,000 रुपए की 11 अचल संपत्ति की जब्त। श्रावणी मेले की सुरक्षा को लेकर डीजीपी तदाशा मिश्रा ने की समीक्षा बैठक। ड्रोन, एआई और सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी। एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट और रिकॉर्ड किए गए उत्तर जारी किए। कल तक चुनौती की सुविधा। और राज्य में अगले 4 दिनों तक आंधी बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे

कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

प्रादेशिक समाचार आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:45 और 15 सेकंड हुए हैं। फिल्म संगीत, ये कार्यक्रम सुनिएगा बस थोड़ी ही देर में।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
2: ज्ञान विज्ञान
3: इतिहास के पन्नों से,
2: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
1: मौसम का मिजाज,
2: अपने शहर की खबरें,
3: बातों मुलाकातों के साथ
1: सुरीला मनोरंजन
2: और भी बहुत कुछ।
1: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
3: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
4: नमस्कार जमशेदपुर।
0: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरी यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 296-0445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।

प्रस्तुति कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत के साथ आज मैं हूं आपकी दोस्त पूनम श्रीवास्तव। नमस्कार। दोस्तों, आज कार्यक्रम फिल्म संगीत में हम याद कर रहे हैं संगीतकार मदन मोहन को। मदन मोहन, जिनका पूरा नाम मदन मोहन कोहली था, सन 1950, 60 और 70 के दशक के भारतीय संगीत निर्देशक थे। उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग के सबसे मधुर और कुशल संगीत निर्देशकों में से एक माना जाता है। संगीत की जितनी विविधताएं थी, उन सब का गहरा ज्ञान एवं समझ उनमें था, जबकि उन्होंने शास्त्रीय संगीत अथवा सुगम संगीत का बकायदा कोई प्रशिक्षण नहीं लिया था।

दोस्तों, मदन मोहन के पिता चाहते थे कि वो फौज में भर्ती हो जाएं और उन्होंने अपने पिता की इस इच्छा को पूरा भी किया। लेकिन 2 साल यहाँ काम करने के बाद वो फिर लखनऊ आ गए, जहाँ पर उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पर उनकी मुलाकात बेगम अख्तर, विलायत खान, तलत महमूद जैसे नामी हस्तियों से हुई। इस दौरान मदन मोहन के मन में संगीतकार बनने की चाह उठी। जब पहली बार उनके पिता ने उनका दिया संगीत सुना तो वो भावुक हो गए। बस फिर क्या था, पिता ने संगीत में अपना करियर बनाने की उन्हें इजाज़त दे दी और फिर तो इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

0: दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय संगीत के तत्वों को पश्चिमी संगीत के तत्वों के साथ जोड़कर हिंदी फिल्में गीतों के माधुर्य को इन्होंने एक नई शैली दी। आज ही के दिन 1975 में लीवर सिरोसिस के साथ के कारण इनकी मृत्यु हो गई, पर आपने गीतों के सहारे ये आज भी हम सबों के बीच जिंदा है। बहरहाल, आपको बता दें, आज इस कार्यक्रम में जिन फिल्मों के गाने आपने सुने वो थे मेरा साया और हीर रांझा। आवाजें थी लता मंगेशकर की, गीत की बोल लिखी थी राजा मेहंदी अली खान और कैफी आजमी ने, और संगीत तो मदन मोहन का था ही। और अब इस कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। अब समाचार सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: बड़ी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। डॉ जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरश से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में नौ मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। एफबी महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी पता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
1: वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगे। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कोक द्वीप में पलट गई थी। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एकतरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई है। ओमान के पास होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से होर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से होर्मुज जलडमरू मध्य में रानी

0: इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
1: ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिस प्रकार सूर्य को उसके प्रकाश के बिना नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार प्रकाश भी सूर्य के बिना नहीं हो सकता। संस्कृत का उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस प्रकार सूर्य और उसके प्रकाश का संपूर्ण अस्तित्व और शक्ति एक दूसरे पर पूर्णतः निर्भर है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समाचार बुलेटिन आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। हमारा ये प्रसारण आप सुनते हैं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:05 और 36 सेकंड हुए हैं। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरंजना हम लेकर हाजिर होंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: जलवायु और भूमि पर जीवन, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन के कारण भूमि की क्वालिटी गिर रही है, पौधे और जानवर लुप्त हो रहे हैं और रेगिस्तान बढ़ रहे हैं। जंगल, आर्द्र भूमि और घास के मैदान जैसे महत्वपूर्ण स्थान जो इंसान और प्रकृति दोनों की मदद करते हैं, आज काफी दबाव में हैं। वनों की कटाई और अत्यधिक चराई जैसे अस्थिर तरीके इन खतरों को और बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर हम जमीन का सही और टिकाऊ उपयोग करें, पेड़ पौधे दोबारा लगाएं और पर्यावरण को सुधारें, तो इससे प्रदूषण कम होगा और जीव जंतुओं की रक्षा भी होगी। यह कदम एक सुरक्षित और मजबूत जलवायु वाले भविष्य के लिए जरूरी है। क्या आप जानते हैं, आज दुनिया की 1/4 से ज्यादा जानवरों और पौधों की प्रजातियां लुप्त होने के किनारे पर हैं।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: हेलो डॉक्टर,
3: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
2: हेलो डॉक्टर,
3: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
2: हेलो डॉक्टर।

प्रस्तुत है सुरंजना। कार्यक्रम सुरंजना के साथ आज मैं हूं आपकी दोस्त पूनम श्रीवास्तव। प्यार भरा नमस्कार आप सबको। दोस्तों, मंगलवार विशेष सुरंजना में आज सुनिए एक ही गीतकार। दोस्तों, वक्त का कोई भी दौर रहा हो, बेशकीमती अनमोल तोहफे इतिहास सजा ही लेता है आने वाले नए वक्त के लिए। कुछ ऐसे ही अनमोल धरोहर शब्दों के रूप में हमारे साथ आज भी शामिल होते हैं जिंदगी के हर दिन में। अनमोल गीतों के खजाने से आज जिन मोतियों को हमने निकाला है, उसकी रचना की है गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने। जी हाँ दोस्तों, आज उनकी कलम की जादूगरी के एहसासों में डूबते हैं हम।

0: का।
1: पेइंग गेस्ट इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें थी। गीत के बोल मजरू सुल्तानपुरी के थे और संगीत था एस टी बर्मन का। दोस्तों, फिल्मी गीतकार के रूप में मजरू सुल्तानपुरी वक्त को छोटा करते हुए हर उम्र के साथ खड़े दिखाई देते हैं। उनके गीत के एल सहगल के साथ साथ सलमान खान ने भी गाए हैं। वो शब्दों को भाव में डालने में हर समय तत्पर रहते थे। गीतों को लिखने में उनकी उस्तादी कमाल की थी। लगभग 4 दशकों तक अपने प्रशंसकों के दिलों पर इन्होंने राज किया।

किशोर कुमार की आवाज़ में ज्वेल थे फिल्म का ये गीत आपने सुना। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे एस टी बर्मन। दोस्तों, मजरूह सुल्तानपुरी का वास्तविक नाम असरार उल हसन खान था। 1 अक्टूबर 1919 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने यूनानी हकीम के रूप में अपना करियर शुरू किया था, लेकिन बाद में उनका झुकाव मुशायरों और शायरी की ओर हो गया। उन्होंने कभी फिल्मों के लिए काम करने के लिए सोचा नहीं, और जब काम करना शुरू किया तो एक अलग ही इतिहास रच डाला।

अभिमान फिल्म का ये प्यारा संगीत आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था और संगीतबद्ध किया था एस डी बर्मन ने। दोस्तों, अनगिनत पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। सन 1993 में उन्हें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले गीतकार थे।

ममता फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने और इसे संगीतबद्ध किया था रोशन ने। और इस गाने के साथ ही फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरंजना अब यहीं संपन्न होता है। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

0: फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरंजना अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:30 और 40 सेकंड हुए हैं। अगला कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत बस थोड़ी ही देर में।
1: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आइए श्रोताओं आज इस कार्यक्रम में हम सुनते हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब का सरोद पर बजाया राग अलहिया बिलावल।

उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब का सरूद पर बजाया राग अलैया बिलावल अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब समाचार सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
1: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन, खेत से फाइबर, कारखाने से फैक्ट्री, फैशन से विदेश तक से प्रेरित भारत टेक्स 2026 का उद्देश्य वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश स्रोत, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में विकसित होना है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। ओमान के पास होर्मुज़ जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। इसके बाद से होर्मुज़ से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से होर्मुज़ जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में होर्मुज़ जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। अब तक 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं और 6 लापता है। ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए आधिकारिक रूप से अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। इस घोषणा के बाद कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में उछाल। और भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
1: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरश से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। इनमें से 3 शव मुंबई से आंध्र प्रदेश पहुंचाए गए हैं। केरल और तमिलनाडु की सरकारें भी शवों को उनके परिजनों के आवास पर पहुंचाने में समन्वय कर रही है। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कुओक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया।
2: इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने होर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास होर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से होर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। विश्व दर्पण के लिए मैं सरफिरोजी।
0: अमेरिका ने आज से होर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में होर्मुज जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरते समय संयुक्त अरब अमीरात यूएई के 2 टैंकरों पर ईरान की क्रूज मिसाइलों के हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई। 6 भारतीयों सहित चालक दल के 8 सदस्य घायल हो गए। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने आज सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी।
3: मोम्बासा और अलबहिया टैंकरों को जलडमरू मध्य के दक्षिणी लेन में ओमान की समुद्री सीमा के भीतर निशाना बनाया गया। मारे गए क्रू सदस्य मोम्बासा टैंकर पर सवार थे। घायलों में से चार की हालत गंभीर है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले की निंदा अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन और क्षेत्रीय सुरक्षा तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बताया। मंत्रालय ने कहा कि वह किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार और सतर्क है। मंत्रालय का कहना है कि देश की सुरक्षा तथा स्थिरता को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश का कड़ा जवाब देने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने कल सऊदी अरब के आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ये कदम यमन के सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हवाई हमलों के जवाब में उठाया गया है। उनका आरोप है कि ये हमले कल रियाद ने किए थे। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इन हमलों ने तनाव को उस स्तर पर पहुंचा दिया है जो सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा कई साल पहले हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले के बाद से नहीं देखा गया था। सऊदी अरब के अधिकारियों ने यमन में हवाई हमलों के बारे में तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला यह आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
1: चार दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। वे कजाकिस्तान के बैकनूर अंतरिक्ष केंद्र से 2 रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रोसकोस्मोस के सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरेंगे। अनिल मेनन के साथ रूस के अंतरिक्ष यात्री पियोत्र द्रुवरोव और अन्ना किकीना भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 75वें अभियान का हिस्सा होंगे। अंतरिक्ष यात्री बुधवार तड़के करीब 1:25 पर अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश करेंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कल लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया। भारत ने इंग्लैंड को 270 रनों से करारी शिकस्त देकर एकमात्र टेस्ट की श्रृंखला अपने नाम कर ली। 457 रनों के विशाल लक्ष्य के जवाब में अंतिम दिन इंग्लैंड 186 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत की पिछले 11 टेस्ट मैचों में ये 7वीं जीत है। साथ ही इंग्लैंड में महिला टेस्ट मैचों में उनका अजेय रिकॉर्ड भी बरकरार है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में मांडविया ने कहा कि इंग्लैंड पर 270 रनों की शानदार जीत इस उपलब्धि को और भी खास बनाती है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, किरण रिजिजू और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ टीम को शुभकामनाएं दी। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर बाद 3:30 शुरू होगा। इंग्लैंड के लिलेशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर-21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए आधिकारिक रूप

से अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। इस घोषणा के बाद कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में उछाल। और खेलों में भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

विश्व दर्पण, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:20 और 35 सेकंड हुए हैं। फिल्म संगीत ये कार्यक्रम सुनेगा बस थोड़ी ही देर में।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700-001-4242।
1: ओ 8700-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700-001-4242 पर।

कार्यक्रम फिल्म संगीत में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार और सुनिए ये गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में करण अर्जुन इस फिल्म का गीत आपने सुना। गीतकार थे इंदिवर और संगीतकार थे राकेश रोशन। और अब आइए सुनते हैं श्रोताओं अगला गीत बॉर्डर 2 फिल्म से।

बॉर्डर टू फिल्म का ये गीत आपने सुना। आवाजें थी दिलजीत दोसांझ, सचित टंडन और परंपरा टंडन की। गीत के बोल लिखे थे कौसर मुनीर ने और संगीत बद्ध किया था सचित परंपरा ने। और श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
6: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
5: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
6: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
7: हेलो डॉक्टर,
8: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ। हेलो डॉक्टर।

छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम फिल्म संगीत में। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं विशाल मिश्रा, नकाश अजीज और अंतरा मित्रा की आवाजों में भूत बंगला फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है कुमार ने और संगीत पद किया है प्रीतम ने।

चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब अगला गीत सुनते हैं ममता शर्मा और दिव्या कुमार की आवाजों में। फिल्म का नाम है जग्गू की लालटेन।

जग्गू की लालटेन, इस फिल्म का गीत आपने सुना। आवाजें थी ममता शर्मा और दिव्या कुमार की। गीत के बोल लिखे थे मयंक गीरा ने और इसे संगीतबद्ध किया था मनीष सहरिया ने। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला गीत सुनते हैं लीसा मिश्रा और गुरु रांधवा की आवाजों में, जुग जुग जियो, इस फिल्म का ये गीत।

अब आइए श्रोताओं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म लाल सिंह चड्ढा से। सोनू निगम की आवाज में इस गीत को हम सुनते हैं और गीत के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने, इसे संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

लाल सिंह चड्ढा इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। सोनू निगम की आवाज थी, गीत के बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत बद किया था प्रीतम ने। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं कमाल खान और पायल देव की आवाजों में राधे फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है शब्बीर अहमद ने और संगीत बद किया है हिमेश रेशमिया ने।

0: अगला कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर आप सुनेंगे इसी चैनल पर।
1: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 11 बजने वाले हैं। अब समाचार सुनेगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
3: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
2: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। वियतनाम के फूकवोक द्वीप के पास हुई स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शव स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो चि मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, टिकाऊ प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने वाली एक नाव बंगाल की खाड़ी में पलट गई। इसमें 9 मछुआरों की मौत हो गई है और 6 अन्य अब भी लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई से नाव से संपर्क टूट गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। झारखंड में लातेहार जिला पुलिस प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के क्षेत्रीय कमांडर रविन्द्र गंजू को गिरफ्तार किया है। नक्सली रविन्द्र गंजू पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के अनुसार गंजू 22 नवंबर 2019 को चंदवा के लुकुया मोड़ के पास पुलिस दल पर हुए माओवादी हमले का मुख्य आरोपी है। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी मारे गए थे। अमेरिका ने आज से होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

0: Skateboard.
1: गीत संगीत रोचक दिलचस्प बातों और कुछ जानकारियों के साथ लेकर हाजिर हैं हम कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का और आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो सखी श्रीति। नमस्कार साथियों,

साथियों, पृथ्वी पर इंसानों और जानवरों दोनों का ही अस्तित्व समान रूप से महत्वपूर्ण है। हालांकि मनुष्यों ने तकनीकी विकास किया है, लेकिन प्राकृतिक दृष्टिकोण से सभी जीवों का इस धरती पर जीने का समान अधिकार है और भारतीय संविधान के तहत भी जीवों की रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। ये धरती केवल इंसानों के लिए नहीं है, बल्कि ये पशु, पक्षियों, कीट पतंगों और सभी जीवों का साझा घर है। पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर एक जीव की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से ये माना जाता है कि जानवर भी दर्द और खुशी महसूस करते हैं, इसीलिए उन्हें क्रूरता से बचाने और सुरक्षित रूप से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। भारतीय संविधान के आर्टिकल 51(1) में प्रत्येक नागरिक को ये निर्देश दिया गया है कि वे पर्यावरण की रक्षा करें और सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयालुता का भाव रखें। अगर हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण में रहें, तो हमें इंसानों और जानवरों के बीच संतुलन बनाना होगा, यानी सह अस्तित्व की आवश्यकता को स्वीकार करना होगा। मानव जाति की भलाई इसी में है कि हम अन्य जीवों के अधिकारों का सम्मान करें और उनके प्राकृतिक आवासों को नष्ट होने से बचाएं।

दिल चाहता है फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे श्रीनिवास की आवाज़ में। संगीतबद्ध किया था शंकर एहसान लॉय ने और शब्द रचना थी जावेद अख्तर की। श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी हम इस गाने से थोड़ी देर पहले बातें कर रहे थे, सह अस्तित्व के आवश्यकता को स्वीकार करने की, यानी इस पृथ्वी पर इंसानों और जानवरों का समान अधिकार है, इस विषय पर हम बात कर रहे थे। तो आपको बताते चलें कि आज 14 जुलाई को शार्क जागरूकता दिवस है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को शार्क मछलियों के महत्व और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका के बारे में जागरूक करना है। अक्सर शार्क को खतरनाक समझा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि शार्क समुद्र में जैव विविधता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शार्क समुद्र के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है और बीमार या कमजोर मछलियों को खत्म करके समुद्री जीवन को स्वस्थ बनाती है। लेकिन अवैध शिकार और पर्यावरणीय बदलावों के कारण कई प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर हैं। शार्क जागरूकता दिवस पर अलग अलग संगठन और समुद्री जीवन से जुड़े कार्यकर्ता सेमिनार्स, अभियान और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि शार्क और समुद्री जीवों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है, ताकि महासागर स्वस्थ और संतुलित बने रहें। इसी के साथ आज विश्व चिंपांजी दिवस भी मनाया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में चिंपांजियों के संरक्षण के महत्व को समझाना और लोगों में जागरूकता फैलाना है। चिंपांजी हमारे सबसे नज़दीकी जीव वैज्ञानिक रिश्तेदार माने जाते हैं और उनकी

बुद्धिमत्ता, सामाजिक व्यवहार और संचार क्षमता अद्भुत होती है। आज दुनिया में चिंपांजियों की संख्या लगातार घट रही है। जंगलों की कटाई, अवैध शिकार और प्राकृतिक आवास के विनाश से इनका जीवन संकट में है। चिंपांजी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनके संरक्षण से जैव विविधता भी सुरक्षित रहती है। विश्व चिंपांजी दिवस पर कई संगठन वन्यजीव संरक्षण, आवास पुनर्स्थापना और शोध से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमें प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और सिर्फ चिंपांजियों को ही नहीं बल्कि प्रत्येक पशु पक्षी और जानवरों को सुरक्षित और आज़ाद वातावरण देना चाहिए।

मोहित चौहान, प्रिया पांचाल, डीन सिकेरा और तन्वी शाह की मिली जुली आवाज़ों में फिल्म एबीसीडी का ये गाना अभी आप सुन रहे थे। संगीतबद्ध किया था सचिन जिगर ने और गीत लिखा था मयूर पुरी ने। श्रोताओं, गोपाल गणेश आगरकर भारतीय समाज सुधार आंदोलन के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उनका जन्म 14 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के तेंभू गांव में हुआ था। वे शिक्षाविद, लेखक और प्रसिद्ध पत्रकार थे। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर न्यू इंग्लिश स्कूल और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। आगरकर ने केसरी पत्रिका के पहले संपादक के रूप में भी कार्य किया, लेकिन अपनी प्रगतिशील सोच के कारण उन्होंने सुधारक नामक पत्रिका शुरू की। उन्होंने छुआछूत, जातिवाद, विधवा पुनर्विवाह और अंधविश्वास जैसे मुद्दों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। वे मानते थे कि सामाजिक सुधार और शिक्षा ही देश को मजबूत बना सकते हैं। गोपाल गणेश आगरकर का निधन 17 जून 1895 को हुआ, लेकिन उनके विचार आज भी शिक्षित और जागरूक समाज निर्माण के लिए प्रेरणा देते हैं।

मणिकर्णिका फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजों में। शंकर एहसान लॉय का संगीत निर्देशन था और शब्द रचना थी प्रशून जोशी की।

श्रोताओं, शंकर राव चौहान भारतीय राजनीति के वरिष्ठ नेता थे, जिन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 14 जुलाई 1920 को महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था। वे अपने सरल स्वभाव और प्रशासनिक कुशलता के लिए खास तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने देश के वित्त और गृह मंत्रालय जैसे बड़े विभाग संभाले। शंकर राव चौहान का निधन 26 फरवरी 2004 को हुआ था। सुधा शिवपुरी हिंदी टेलीविजन और थिएटर की जानी मानी अभिनेत्री थी। उनका जन्म भी 14 जुलाई 1937 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने थिएटर में कदम रखा और मंच पर अपनी अलग पहचान बनाई। सुधा शिवपुरी ने फिल्मों में भी काम किया, लेकिन असली लोकप्रियता उन्हें टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में बा के किरदार से मिली। इस भूमिका ने उन्हें हर घर में पहचान दिलाई। उन्होंने स्वामी, पिंजर जैसी फिल्मों और रजनी रिश्ते जैसे धारावाहिकों में भी यादगार अभिनय किया। उनका सरल और प्रभावी अभिनय आज भी दर्शकों के दिलों में बसा हुआ है। सुधा शिवपुरी का निधन 20 मई 2015 को हुआ, लेकिन उनकी कलात्मक छवि हमेशा अमर रहेगी। आज उनके जन्मदिवस पर उन्हें याद करते हुए आइए सुने उनकी अभिनीत फिल्म पिंजर का ये गाना।

पिंजर फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। स्वर और संगीत जगजीत सिंह का था, गीत लिखा था गुलजार ने। और श्रोताओं नमस्कार, जमशेदपुर कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद वापस लौटेंगे, साथ होगा गीत संगीत का सिलसिला, कुछ जानकारियां साझा करेंगे और साथ ही करेंगे थोड़ी बातचीत भी। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 MHz पर।

0: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

अंतराल के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में। और आज कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी रेडियो सखी श्रीति। दोस्तों, धन गोपाल मुखर्जी भारतीय मूल के पहले लेखक थे जिन्होंने अंग्रेजी में लेखन कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की। उनका जन्म 6 जुलाई 1890 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। उन्होंने बच्चों के लिए कई प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी जिनमें गाय और बाघ खास हैं। उन्हें 1928 में न्यूबेरी मेडल से सम्मानित किया गया था। उनका निधन आज ही के दिन 14 जुलाई 1936 को हुआ। उनका साहित्य आज भी प्रेरणा देता है और हमेशा देता रहेगा।

हिंदी सिनेमा की एक दिग्गज और जानी मानी अभिनेत्री थीं लीला चिटनिस। 1930 से 1980 के दशक तक सक्रिय रही लीला भारतीय फिल्म उद्योग की पहली ग्रेजुएट अभिनेत्री और पहली लक्स गर्ल भी थीं। उन्होंने बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले अशोक कुमार के साथ कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं। बाद में वे आवारा, गाइड और गंगा जमुना जैसी फिल्मों में आदर्श माँ की भूमिकाओं के लिए जानी गईं। 9 सितंबर 1909 को कर्नाटक के धरवाड़ में जन्मी लीला चिटनिस ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, जो उस समय की महिलाओं के लिए काफ़ी दुर्लभ बात थी। 1940 के दशक में उनकी और अशोक कुमार की जोड़ी बेहद लोकप्रिय रही। उन्होंने आज़ाद, बंधन और झूला जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। ये भी कहा जाता है कि अशोक कुमार ने खुद माना था कि लीला ने ही उन्हें आंखों से भाव व्यक्त करना सिखाया था। 1941 में लीला चिटनिस भारत की पहली ऐसी अभिनेत्री बनी जिन्होंने प्रतिष्ठित साबुन ब्रांड लक्स के लिए विज्ञापन किया। अभिनय के अलावा उन्होंने फिल्म निर्माण में भी हाथ आजमाया। उन्होंने फिल्म किसी से ना कहना, जो 1942 में आई थी, का निर्माण किया और आज की बात फिल्म का निर्देशन किया। इसके अलावा उन्होंने चांदनी दुनिया नाम से अपनी आत्मकथा भी लिखी। 1940 के दशक के मध्य के बाद उन्होंने खुद को चरित्र भूमिकाओं में ढाला। उन्होंने आवारा फिल्म में राज कपूर और गंगा जमुना फिल्म में दिलीप कुमार जैसे बड़े सितारों की माँ का किरदार निभाया। उन्हें अक्सर हिंदी सिनेमा की पहली आदर्श और ममतामयी माँ माना जाता है। लीला चिटनिस ने 1985 में अपनी आखिरी फिल्म दिल तुझको दिया की और बाद में अपने बच्चों के साथ रहने के लिए वो अमेरिका चली गईं। 94 वर्ष की आयु में 14 जुलाई 2003 को उनका निधन हो गया। आज उनकी पुण्यतिथि है। दिग्गज अभिनेत्री लीला चिटनिस को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए आइए सुने उन्हीं की अभिनीत फिल्म गंगा जमुना का ये गाना।

गंगा जमुना फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत पद किया था नौशाद अली ने और गीत लिखा था शकील बदायूनी ने।

और श्रोताओं, अब नमस्कार जमशेदपुर कार्यक्रम में हम बातें करेंगे स्वास्थ्य से संबंधित। तो आपको बता दें कि जिले में मलेरिया नियंत्रण और रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसे लेकर व्यापक स्तर पर सर्विलांस, जांच और उपचार अभियान संचालित किए जा रहे हैं। जिले में गत 29 जून 2026 से 12 जुलाई 2026 तक जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, शहरी स्वास्थ्य केंद्रों और सदर अस्पताल के माध्यम से कुल 1,40,459 मलेरिया जांच की गई है। इनमें से 1,895 लोग मलेरिया पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे कुल मलेरिया पॉजिटिव दर 1.96% दर्ज की गई। इसके साथ रविवार को धाल भूमगढ़ में एक और पोटका में दो गांवों में नियमित सर्विलांस, जांच और त्वरित उपचार किया गया। सिविल सर्जन ने आम नागरिकों से अपील की है कि बुखार आने पर स्वयं दवा लेने की बजाय निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाकर तत्काल मलेरिया जाँच करवाएं। मच्छरों के प्रजनन स्थलों को समाप्त करें, घर के आसपास पानी जमा न होने दें, रात में मच्छरदानी का उपयोग करें और स्वास्थ्य विभाग की टीमों को सर्वे और नियंत्रण कार्यों में सहयोग दें। साथियों, आधुनिक जीवन शैली में स्मार्टफोन, लैपटॉप और एयर कंडीशनर हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुके हैं। स्क्रीन पर बढ़ता समय और बदलती जीवन शैली हमारी आंखों की सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है। यही कारण है कि आज जमशेदपुर जैसे व्यस्त शहरों में ड्राई आई यानी आंखों का सूखापन के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हाल के दिनों में अस्पतालों और आई क्लिनिक में ड्राई आई सिंड्रोम के मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। डॉक्टरों के अनुसार हर 10 में से 4 व्यक्ति इस समस्या से पीड़ित है। इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल जुलाई में पूरे विश्व में ड्राई आई अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है। सामान्य तौर पर एक इंसान एक मिनट में 15 से 20 बार अपनी पलकें झपकाता है, लेकिन जब

हम लगातार कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन को देखते हैं तो पलकें झपकने की दर घटकर मात्र 5 से 7 बार रह जाती है। इससे आंखों में प्राकृतिक रूप से बनने वाले आंसू जल्दी सूख जाते हैं। वहीं एसी वाले बंद कमरों में हवा में नमी बहुत कम होती है। एसी की ठंडी और शुष्क हवा आंखों के कॉर्निया से नमी को तेजी से सोख लेती है, जिससे आंखों में सूखापन, जलन और लालिमा की समस्या शुरू हो जाती है। आंखों की सतह को चिकना और साफ रखने के लिए उसके ऊपर हमेशा आंसू की एक पतली परत बनी रहती है। जब आंखों में पर्याप्त मात्रा में आंसू नहीं बनते या फिर बनने वाले आंसू बहुत जल्दी सूख जाते हैं तो उसे ही ड्राई आई सिंड्रोम कहते हैं। आंसू केवल पानी नहीं है, बल्कि ये पानी, तेल और म्यूकस का मिश्रण होते हैं। इनमें से किसी भी तत्व की कमी होने पर आंखों में सूनापन आने लगता है। ख्याल रखें अपना, अपनों का। स्क्रीन टाइम लिमिटेड करें और ड्राई आई की जो समस्या है उससे निजात पाने में आपको सहूलियत होगी।

विशाल ददलानी की आवाज में तलाश फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। राम संपत का संगीत पद किया हुआ गाना था और जावेद अख्तर का लिखा हुआ गीत।

श्रोताओं, अब बात करेंगे गजलों के बादशाह मदन मोहन की। बेहतरीन संगीतकारों में से एक मदन मोहन कोहली की आज पुण्यतिथि है।

अपने शानदार संगीत सफ़र में लग जा गले आपकी नज़रों ने समझा और मेरा साया साथ होगा जैसी अमर धुनों की रचना की। उनकी अधिकांश बेहतरीन रचनाएं दिग्गज गायिका लता मंगेशकर के साथ थी, जिन्हें वे अपनी बहन मानते थे। संगीत की दुनिया में कदम रखने से पहले मदन मोहन आर्मी में लेफ्टिनेंट थे। उनका जन्म 25 जून 1924 को बगदाद में हुआ था। बाद में उन्होंने संगीतकार सी रामचंद्रा के सहायक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। 1961 में आई फिल्म संजोग का गाना वो भूली दास्तान, अनपढ़ का गाना आपकी नजरों ने समझा और मेरा साया जैसी फिल्मों में बेहतरीन संगीत दिया था मदन मोहन ने। मदन मोहन का 14 जुलाई 1975 को 51 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, लेकिन सालों बाद उनके अप्रकाशित संगीत को उनके बेटे संजीव कोहली ने सहेजा और फिल्म वीर जारा में इस्तेमाल किया, जो एक बहुत बड़ी संगीतमय हिट साबित हुई। उन्हें 1970 में फिल्म दस्तक के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। गजलों के बादशाह दिग्गज संगीतकार मदन मोहन को उनकी पुण्यतिथि पर हम नमन करते हैं और आइए सुनवाते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित उनकी फिल्म दस्तक का ये गाना।

साथियों, भारतीय सिनेमा में ऐसे संगीतकारों ने जन्म लिया है जिनकी धुनें इस कदर अमर हुई कि उनके जाने के बाद भी उनका संगीत आज भी लोगों की जुबान पर चढ़कर बोलता है। जी हाँ, संगीत की दुनिया जिनकी धुनों से रोशन है। बात कर रहे हैं संगीतकार रोशन की, जो राकेश रोशन और राजेश रोशन के पिता और ऋतिक रोशन के दादाजी थे। संगीतकार रोशन का जन्म आज ही के दिन 1927 में हुआ था। बचपन से ही उन्हें संगीत से प्यार था, इसीलिए उन्होंने छोटी उम्र में ही संगीत की शिक्षा ली थी। यही नहीं, सरोद वादक अलाउद्दीन खान के मार्गदर्शन में रोशन एक कुशल सरोद वादक बने। साल 1940 में ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने रोशन को ऑल इंडिया रेडियो के एक कार्यक्रम में स्टाफ कलाकार के तौर पर रखा था। हालांकि 8 साल बाद यानी 1948 में उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी थी। साल 1950 में संगीतकार रोशन ने मोहम्मद रफ़ी और तलत महमूद के साथ काम किया। इसके बाद उन्होंने एक मीरा भजन की रचना की, जिसे बाद में लता मंगेशकर ने नौबहार फिल्म के लिए गाया था। इस भजन का नाम था एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। उन्हें पहला ब्रेक संगीत निर्देशक निसार बज़मी ने 1956 में अपनी फिल्म भला आदमी से दिया था। यही नहीं, दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम भी किया। आनंद बख्शी और रोशन ने मिलकर कई हिट गाने बनाए। रोशन ने बरसात की रात से, न तो कारवां की तलाश है और जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात जैसी हिट फिल्में दी। बरसात की रात भी 1960 के दशक की सुपरहिट फिल्म थी। रोशन 20 साल से भी ज़्यादा समय से दिल की बीमारी से पीड़ित थे। 16 नवंबर 1967 को मुंबई महाराष्ट्र में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। उस वक्त उनकी आयु 50 साल की थी। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं और आइए आपको सुनवाते हैं ममता फिल्म का ये गाना रोशन के संगीत निर्देशन में।

0: आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये, दिन के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में सुनिएगा हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनक।

0: Κλατά. भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
1: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन सिटी से मुंबई लाए गए। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास ने हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। अमरीका ने लगातार 3री रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशहर, चाहबार, जास्क और कोनारक के आसपास के इलाकों में हमला कर ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा उनकी नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलरमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें एक नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टैंकरों पर हुए इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 6 भारतीय तथा 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका होर्मुस जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज कर दिया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक म्यूजिक बार में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या 30 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार 70 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 24 की हालत गंभीर है। पुलिस आग लगने के कारणों और बार में सुरक्षा नियमों की जांच कर रही है। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 356 अंक गिरकर 77,272 पर और निफ्टी 87 अंक घटकर 24,125 पर कारोबार कर रहा था। इंग्लैंड के लिलेशॉर नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कितनी मिलती जुलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, मानो मेरे रंगों ने छू कर देखी हो तस्वीर तेरी। मेरे एहसासों में कहीं तेरे होने का एहसास है, मुकम्मल ना सही ये ऐसी जिंदगी बड़ी खास है। यादों के संदूक से दस्तक देती हैं ये तेरी आहटें, खनक कर बिखर जाती थीं जो तेरी बातें। तेरी यादों से दिल का घरौंदा अब भी आबाद है, और ये ऐसी जिंदगी मेरे लिए बहुत खास है।

एक प्रेम ही है जो युगों युगों से एक है। अभिव्यक्ति कोई भी हो, कैसी भी हो, प्रेम का पर्याय नहीं बदलता। जब दिलों के रिश्ते सच्चे हों तो उन्हें उनकी मंजिल भी मिल ही जाती है। प्यार चाहने और देने वाला सच्चा दिल कोई हिसाब किताब नहीं जानता, वो तो बस सजदे में झुकना जानता है। बड़ी रोशनी है प्यार के नूर में, सुकून बड़ा है तेरे सुरूर में। यूं तो बहुत कुछ पाया नहीं है, कुछ वक्त जो तेरे साथ गुजारा था वो अब तक गुजरा नहीं है।

हर वक्त जो पहरे पे बैठी रहती हैं आंखें, उनसे कह दो ज़रा देर आराम कर लें। ख्वाबों का आशियाना बनाने के लिए आंखें तो बंद करनी होंगी। किसी के इंतज़ार में दिन से रात और रात से दिन करती ये आंखें। अब कतरा कतरा पिघलते ख्वाबों को रोक ना पाएंगी।

और इसी गाने के साथ आज का भावगीत कार्यक्रम अब बस यहीं तक। जिन फिल्मों के गाने आज आपने इस कार्यक्रम में सुने वो फिल्में थीं खतरों के खिलाड़ी, जीना मरना तेरे संग, माय नेम इज़ खान और हाफ गर्ल फ्रेंड। आवाज़ें थीं इन गानों के लिए मोहम्मद अजीज़, अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू, राहत फतेह अली खान, ऋचा शर्मा, शंकर महादेवन, श्रेया घोषाल और फरहान सईद की। संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, दिलीप सेन, समीर सेन, शंकर एहसान लॉय और फरहान सईद। गीतकार थे आनंद बख्शी, समीर, निरंजन आयंगर और कुमार। आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला कार्यक्रम है शास्त्रीय संगीत का।

0: नमस्कार युवा साथियों, आज शाम ट्यून इन कीजिए 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आने वाले शो युवाणी के साथ, जहां हम जानेंगे कुछ सपने किताबों में नहीं मैदानों की मिट्टी में भी बन सकते हैं। साथ ही बात करेंगे लापरवाही के कारण रोड पर खत्म होती सपनों के बारे में। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे ऐसे विषय पर जो हमारी जेनरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस सुनहरे शाम को सजाएंगे सुरीले गीत के साथ। तो जुड़ना ना भूले मेरे यानी आयुषी झा के साथ 5:02 पर आने वाले शो युवाणी में।
1: आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आइए सुने उस्ताद रशीद खान का ख्याल गायन राग भीम पलासी में।

वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। वियतनाम के फोक वोक द्वीप के पास हुई स्पीडबोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं, इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशहर, चाहबार, जास्क और कुनारक के आसपास के इलाकों में हमला कर ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा उनकी नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें एक नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टैंकरों पर हुए इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 6 भारतीय तथा 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों

0: नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 दिनों के अंदर झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग को कार्यरत करने का दिया निर्देश। बीआईटी सिंदरी बनेगी यूनिटरी यूनिवर्सिटी। लोहरदगा के आवासीय विद्यालय में सर्पदंश की घटना पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट। एसआईआर अभियान में पश्चिमी सिंहभूम की बीएलओ अनीता देवी और विजय लक्ष्मी ने गणना प्रपत्रों का किया 100% डिजिटाइजेशन, बने उत्कृष्ट बीएलओ। झारखंड के पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक का निधन। राजनीतिक जगत में शोक की लहर। मुख्यमंत्री ने व्यक्त की शोक संवेदना। और मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में बोकारो गिरिडीह समेत कई जिलों में बादल गर्जन वज्रपात के साथ बारिश का जताया पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अगले 15 दिनों के अंदर झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग को कार्यरत करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने हायर एजुकेशन और रोजगार परक कोचिंग के लिए 15 दिनों के अंदर कोचिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी को पूर्ण रूप से कार्यरत करने का भी निर्देश दिया। इसके साथ ही बीआईटी सिंदरी को यूनिटरी यूनिवर्सिटी के रूप में अपग्रेड करने के लिए सहमति दी गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि चाईबासा और सारंडा क्षेत्र के विकास के लिए पिछले 10 वर्षों में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत लगभग 3,700 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी राशि मिलने के बावजूद भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के कारण खनन प्रभावित क्षेत्रों में अपेक्षित विकास नहीं हो सका। श्री मरांडी ने कहा कि इन क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
1: जिस क्षेत्र में खदान का इलाका होता है वहाँ लोग एक प्रकार से नरकीय जीवन जीने को विवश हो, लेकिन सारंडा की इस आयरन और खदान से सिंहभूम के डीसी के खजाने में डीएमएफटी पर 3700 करोड़ से अधिक रुपया इकट्ठा हुआ। सब जगह सड़कें अच्छी हो जाती, सब जगह लोगों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध हो जाता, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासेस बनते।
0: झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार कल दुमका के सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे और विश्वविद्यालय की शैक्षणिक तथा प्रशासनिक स्थिति की समीक्षा करेंगे। साथ ही कुलपति, कुल सचिव एवं अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न योजनाओं और लंबित कार्यों की प्रगति की जानकारी लेंगे। लोहरदगा जिले के कुड़ू प्रखंड स्थित आवासीय विद्यालय में 4 छात्राओं के सांप काटने और 1 छात्रा की मौत मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले की बूथ लेवल अधिकारी अनीता देवी और विजय लक्ष्मी ने क्षेत्र के सभी गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटाइजेशन सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस उपलब्धि के साथ उनका नाम राज्य के बेहतर प्रदर्शन करने वाले बीएलओ की सूची में भी शामिल हो गया है। चक्रधरपुर की बीएलओ विजय लक्ष्मी ने बताया कि एसआईआर कार्य में 100% लक्ष्य हासिल करने में सबका सहयोग मिला। वहीं अनीता देवी ने अन्य बीएलओ से भी निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने का आह्वान किया।
2: बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत मेहनत भी किया, लेकिन मेहनत करने में उतना ही आनंद भी आया। पूरे जनता का भी, पूरे वोटर का भी सपोर्ट रहा, उनके सहयोग से भी हम लोग 100% का हो पाया। अभी जिनके माता पिता का हो रहा है, आगे उनके बच्चे के लिए फायदा होगा।
0: झारखंड पुलिस ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी के सहयोग से रांची के होटवार स्थित अनुसंधान प्रशिक्षण विद्यालय में अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय विशेष अनुसंधान प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इस प्रशिक्षण में जिला पुलिस, एटीएस और अन्य इकाइयों के 45 अधिकारी प्रभावी अनुसंधान और अभियोजन की बारीकियां सीख रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन आईजी प्रशिक्षण ए विजय लक्ष्मी ने किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मन्नान मल्लिक का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और रांची के एक निजी अस्पताल में इलाजरत थे। उनके निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। दुमका में युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में एक दिवसीय प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया। प्रभारी प्राचार्य शंकर हाजरा ने बताया कि इस दौरान युवाओं को प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना, पंजीकरण प्रक्रिया, उद्योग में प्रशिक्षण के अवसर तथा रोजगार की संभावनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। जमशेदपुर पुलिस ने ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार के खिलाफ सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में छापेमारी की। इस कार्रवाई में एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सिटी एसपी ललित मीणा ने इसकी जानकारी दी।
3: इंदिरा नगर क्षेत्र, मुंबई इंदिरा नगर क्षेत्र में कुछ लोगों को ब्राउन शुगर के साथ में गिरफ्तार किया गया। इनमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक है भारती केबरतो, दूसरे हैं विशाल केबरतो और एक बालक है जो 18 वर्ष से कम उम्र का है, तो उसको नियुक्त किया गया है। दो लोग हैं, उनका आपराधिक इतिहास है। इसमें टोटल 38 पुड़िया मादक पदार्थ भी इनके पास से बरामद किया गया।
0: सीआईएसएफ कोयला क्षेत्र करगली रांची के उप महानिरीक्षक सुमंत सिंह ने करकट्टा जंगल का दौरा कर अवैध कोयला खनन प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को अवैध खनन, कोयला तस्करी और उससे जुड़े नेटवर्क के खिलाफ अभियान लगातार जारी रखने तथा ड्रोन और अन्य तकनीकी संसाधनों के माध्यम से निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। घरेलू शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक दोपहर के कारोबारी सत्र में नुकसान के साथ काम कर रहा था। सेंसेक्स 356 अंक लुढ़क कर 77,272 पर और निफ्टी 87 अंक घटकर 24,125 पर कारोबार कर रहा था। इधर राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख

0: लाख 33,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपए प्रति किलो है। विश्व युवा कौशल दिवस को लेकर हजारीबाग में 3 दिवसीय शिल्पोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें 100 से अधिक कलाकारों को एक मंच पर लाने की कोशिश की गई। खासकर हजारीबाग की लोकप्रिय हजारों साल पुरानी सोहराय कला की झलक देखने को मिली। सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि शहर में इन्हें एक बेहतर स्थान भी देना चाहिए ताकि सालों भर इन कलाकारों के उत्पाद बिक सकें।
1: टैलेंट को कमी नहीं, मार्केटिंग का उचित व्यवस्था अगर हो जाए, हमारे जितना भी उद्यमी यहाँ लगे हुए हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। जैसे पुराना समरणालय भी रो रहा है, वहाँ बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। धार क्राफ्ट बीमार हो गया है, उसको अगर जीर्णोद्धार करके बढ़िया से उसको बनाया जाए तो वहीं भी इन लोग सारे लोग अपना अगर मार्केटिंग करेंगे तो निश्चित तौर पर इन लोग का जो स्थिति है वो बेहतर हो पाएगा।
0: और अब मौसम। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में बोकारो, गिरिडीह समेत कई जिलों में बादल गर्जन वज्रपात के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम केंद्र रांची ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 दिनों के अंदर झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग को कार्यरत करने का दिया निर्देश। बीआईटी सिंदरी बनेगी यूनिटरी यूनिवर्सिटी। लोहरदगा के आवासीय विद्यालय में सर्पदंश की घटना पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट। एसआईआर अभियान में पश्चिमी सिंहभूम की बीएलओ अनीता देवी और विजया लक्ष्मी ने गणना प्रपत्रों का किया 100% डिजिटाइजेशन, बनी उत्कृष्ट बीएलओ। झारखंड के पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक का निधन। राजनीतिक जगत में शोक की लहर। मुख्यमंत्री ने व्यक्त की शोक संवेदना। और मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में बोकारो, गिरिडीह समेत कई जिलों में बादल गर्जन वज्रपात के साथ बारिश का जताया पूर्वानुमान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: हेलो डॉक्टर,
5: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
4: हेलो डॉक्टर,
5: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
4: हेलो डॉक्टर।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फ़ोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: नमस्कार जमशेदपुर, नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
2: ज्ञान विज्ञान
3: इतिहास के पन्नों से,
2: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
1: मौसम का मिजाज,
2: अपने शहर की खबरें,
3: बातों मुलाकातों के साथ
1: सुरीला मनोरंजन
2: और भी बहुत कुछ।
1: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
3: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
1: नमस्कार जमशेदपुर।
4: जलवायु परिवर्तन हम क्या कर सकते हैं, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन लोगों के जीवन के लिए एक बड़ा खतरा है और इससे बचने के लिए तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। सरकारों को उत्सर्जन घटाने और जलवायु के प्रभाव से निपटने के लिए कदम उठाने चाहिए। आम लोगों से लेकर इंडस्ट्रीज तक सबकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। कोयला, तेल और गैस का कम इस्तेमाल बहुत जरूरी है। कई देश अब भी इन पुराने ईंधनों पर निर्भर है, लेकिन वे साफ ऊर्जा अपनाने की पहल कर सकते हैं। निजी क्षेत्र, खासकर ऊर्जा, फैक्ट्री और खेती से जुड़े व्यवसायों की बड़ी जिम्मेदारी है कि वे धरती को बचाने में मदद करें। क्या आप जानते हैं 191 देश पेरिस समझौते का हिस्सा हैं, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जाए।

आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ आवश्यक संदेशों के बाद हाजिर है हम कार्यक्रम फिल्म संगीत के साथ। स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का और इस संगीत में सफ़र की हम सफ़र, मैं हूं आपकी रेडियो सखी श्रीति। नमस्कार साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं फिल्म जवाब हम देंगे के गाने से। शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में है ये गाना। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और शब्द रचना है SH बिहारी की। आइए सुनते हैं।

प्यासा सावन। जी हाँ श्रोताओं, इसी फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में संतोष आनंद का लिखा हुआ गीत था और आवाजें थी लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की। फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गाना आइए आपको सुनवाते हैं साथी फिल्म से। मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में है ये गाना। नौशाद का संगीत निर्देशन है और मजरू सुल्तानपुरी की शब्द रचना।

नमस्कार युवा साथियों, आज शाम ट्यून इन कीजिए 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आने वाले शो युवाणी के साथ, जहां हम जानेंगे कुछ सपने किताबों में नहीं मैदानों की मिट्टी में भी बन सकते हैं। साथ ही बात करेंगे लापरवाही के कारण रोड पर खत्म होती सपनों के बारे में। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे ऐसे विषय पर जो हमारी जेनरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस सुनहरे शाम को सजाएंगे सुरीले गीत के साथ। तो जुड़ना ना भूले मेरे यानी आयुषी झा के साथ 5:02 पर आने वाले शो युवाणी में।

सिंदूर फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत था और आवाजें थी लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की। अब आइए आपको सुनवाते हैं प्रेम पर्वत फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है जानिसार अख्तर ने और संगीत निर्देशन है जयदेव का।

और अब आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आराधना फिल्म से लिया है ये गाना हमने, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। एसडी बर्मन का संगीत निर्देशन है और आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने होर्मुज जलडमरो मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात टेक्सस में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से। और क्रिकेट में भारत आज शाम बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ पहला एक दिवसीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने होर्मुज जलडमरो मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड
0: ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब किया और इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अलबहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। एमटी मुंबासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। भारत ने नाविकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। इससे होर्मुज जलडमरु मध्य से निर्बाध और सुरक्षित नौवहन बाधित हुआ है। भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में हमलों की दोबारा शुरुआत और शत्रुता बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए हिंसा को तत्काल रोकने और संवाद तथा कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान किया है। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए, ताकि क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में निर्बाध नौवहन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज जलडमरु मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरु मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमरीका के दावे को खारिज किया है। केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जोल्फाघरी ने कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को होर्मुज जलडमरु मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया है और फलस्तीन तथा इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फलस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसल्स में फलस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। सुश्री रंगनाथन ने बताया कि भारत की परियोजनाएं जरूरतों पर आधारित हैं और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समझौते के लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख उत्पादों पर लगने वाले शुल्क से पूरी तरह राहत मिलेगी। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी आधारित सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े भारतीय सेवा प्रदाताओं को भी ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुई नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो चि मिन सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने बताया है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है।

0: हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते भी वस्त्र क्षेत्र को लाभ पहुंचा रहे हैं।
1: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए हैं। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि अब कंटेनरों में उर्वरकों का परिवहन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा।
2: अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया।
3: बहुत जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा, जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं सामने उनके आधार पे और जो घटिया राजनीति आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करी है वो आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के बाद जरूर रखूंगा। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित, अरविंद केजरीवाल का खासम खास।
0: जम्मू कश्मीर में जम्मू के एक स्पेशल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने पाकिस्तान में मौजूद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है। यह आदेश पहलगाम आतंकी हमले के मामले में NIA द्वारा सईद के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के दो दिन बाद आया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोमांस उत्पादक देश है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन के लिए लाखों श्रद्धा

0: वालों की भीड़ उमड़ी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन का आयोजन हो रहा है। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारी और पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं। साथ ही भीड़ और ट्रैफिक का व्यवस्थित ढंग से सुनियंत्रित किया जा रहा है ताकि दर्शन आसानी से और बिना किसी परेशानी की हो सके। नव यौवन दर्शन के साथ ही रथ यात्रा से पहले की रस्में पूरी हो रही है। अब गुरुवार को गहरे धार्मिक उत्साह और भव्य समारोह के साथ विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यायार ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @YayarNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। श्रृंखला का दूसरा मैच कार्डिफ में बृहस्पतिवार और तीसरा तथा अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे 2 जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान की बात।

0: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज़ और दोपहर समाचार अभी आप सुन रहे थे। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं गीत संगीत का सिलसिला। जी हाँ, कार्यक्रम है फिल्म संगीत का। सुनवाएंगे एक छोटे से संदेश के बाद।
1: साथियों, आज शाम ट्यून इन कीजिए 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आने वाले शो युवाणी के साथ, जहां हम जानेंगे कुछ सपने किताबों में नहीं मैदानों की मिट्टी में भी बन सकते हैं। साथ ही बात करेंगे लापरवाही के कारण रोड पर खत्म होती सपनों के बारे में। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे ऐसे विषय पर जो हमारी जनरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस सुनहरे शाम को सजाएंगे सुरीले गीत के साथ। तो जुड़ना ना भूले मेरे यानी आयुषी झा के साथ

एक छोटे से आवश्यक संदेश के बाद फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर हाजिर है हम। स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का। कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट श्रीति। नमस्कार साथियों, शुरुआत कर रहे हैं कार्यक्रम की सूरमा फिल्म के गाने से। दिलजीत दोसांझ की आवाज़ में है ये गाना। संगीतकार है शंकर एहसान लॉय और शब्द रचना है गुलजार की। आइए सुनते हैं।

एमएम क्रीम के स्वर और संगीत निर्देशन में स्पेशल 26 फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। गीत लिखा था इरशाद कामिल ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं बैंड बाजा बारात फिल्म का ये गाना श्रेया घोषाल और सलीम मर्चेंट की आवाज़ों में। संगीतबद्ध किया है सलीम सुलेमान ने और गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने।

चवन्ने। और अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश मोहरा फिल्म से। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में है ये गाना। विजू शाह का संगीत निर्देशन है और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

और इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर यह कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। दिन के 2:55 होने को है, थोड़ी ही देर में सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। रांची के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने राज्य के कानून व्यवस्था और विकास कार्यों में सुस्ती को लेकर प्रशासन को संवेदनहीन बताया। श्री सेठ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आरोप लगाया है कि केंद्र से मिलने वाले फंड के बावजूद राज्य सरकार की उदासीनता के कारण विकास योजनाएं फाइलों में अटकी हुई हैं। रांची ट्रेजरी घोटाले में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा ट्रेजरी अफसरों को क्लीन चिट देने पर भाजपा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने इस बयान को जांच प्रभावित करने वाला बताया है।
1: हजारों करोड़ का ट्रेजरी स्कैम हुआ, कई गिरफ्तारियां हुई, लेकिन सिर्फ छोटी मछलियों तक ये जो है जांच पहुंची है। और जो एसआईटी है उसमें उन अधिकारियों को रखा गया जिनके कार्यकाल में एसपी रहते हुए खुद घोटाले का आरोप लगा। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं की है, लेकिन राज्य के वित्त मंत्री ने इन ट्रेजरी अफसरों को क्लीन चिट दे दिया, कहा इनकी संलिप्तता नहीं है, यानी सरकार पहले से निष्कर्ष पर बैठी हुई है।
0: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी आगामी 21 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर संसद चलो विरोध प्रदर्शन करेगी। रांची में प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी डॉ. सुधा प्रसाद ने बताया कि पार्टी नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिला आरक्षण को देश में अविलंब लागू करने और परिसीमन की शर्त हटाने की मांग कर रही है।
2: कि अगर आप नारी के इतने हितैषी है, इतने शुभचिंतक है, तो 2023 में ये पारित हो चुका था, इसको आप त्वरित लागू कर दे। आपकी मंशा साफ नहीं है, परिसीमन लागू करना चाह रहे हैं, इसमें बीजेपी अपना स्वार्थ देख रही है, परिसीमन ये अपने हिसाब से कर रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड विधानसभा परिसर में राज्य के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय मन्नान मल्लिक के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और कई अन्य मंत्रियों व विधायकों ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सभी नेताओं ने इसे राज्य के लिए एक अपूर्णीय क्षति बताया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लोहरदगा के कुड़ू में आवासीय स्कूल में सांप काटने से एक छात्रा की मौत और तीन के घायल होने के मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव से दो हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। घायल तीनों छात्राओं की स्थिति अब खतरे से बाहर है। फिल्मनिया उरांव का इलाज रांची स्थित रिम्स में जारी है, जबकि अनिशा और मनीषा का उपचार लोहरदगा सदर अस्पताल में किया गया। पलामू में भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता गणना प्रपत्र का वितरण तेजी से जारी है। अधिकांश प्रखंडों में 94 से 98% घरों तक प्रपत्र पहुंचाए जा चुके हैं। वितरण में डाल्टनगंज और डिजिटलीकरण में विश्रामपुर प्रखंड सबसे आगे है। प्रशासन ने मतदाताओं से समय पर प्रपत्र भरने की अपील की है। जमशेदपुर के सदर अस्पताल में अगले महीने से बोन मैरो की जांच पूरी तरह मुफ्त शुरू होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से भी सैंपल यहां भेजे जा सकेंगे।
3: कोल्हान के मरीजों को अब बोन मैरो जांच के लिए निजी पैथोलॉजी लैब या बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। जमशेदपुर स्थित सदर अस्पताल में अगले महीने ये महत्वपूर्ण जांच सुविधा पूरी तरह से निशुल्क शुरू होने जा रही है। पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से भी सैंपल एकत्र कर जांच के लिए सदर अस्पताल भेजे जाएंगे। वर्तमान में इस जांच के लिए मरीजों को 4,000 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। साथ ही गंभीर बीमारियों के निदान और उपचार में तेजी आए। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर।
0: गोड्डा के अंतरराष्ट्रीय मिक्स मार्शल आर्ट खिलाड़ी देवगन मरांडी भारत नेपाल प्रतियोगिता जीतकर झारखंड लौट आए हैं। नेपाल के खिलाड़ी को हराकर देश का मान बढ़ाने वाले देवगन का उनके गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। सीमित संसाधनों के बावजूद इस बड़ी सफलता को हासिल कर उन्होंने युवाओं को लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने का संदेश दिया। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में बोकारो, गिरिडीह समेत कई जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम केंद्र रांची ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 3 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम उमंग।

0: नंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, उमंग कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: आज के युग में हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है पर्यावरण की रक्षा, क्योंकि यही हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन जी का।
2: बड़ा बम चौक मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय और साथ साथ बेबी किट्टू।
3: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने और अर्चना ताई गोंडाने।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। आशा है आपको पिछली जानकारियां अवश्य पसंद आई होंगी। हमने बात की थी
2: पेड़ पौधों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में और उनके बारे में कई रोचक बातों को जाना था। अजीत जी, अब ये भी जानिए कि यात्रा में आगे चलते हैं, तो क्यों ना आज बात की जाए किताबों की।
3: विमलेश जी, आपने तो सचमुच मेरे मुंह की बात ही छीन ली। यही तो मैं भी कहने वाला था
2: जी।
3: मुझे एक बेहद प्रसिद्ध कविता की पंक्तियाँ याद आ रही है।
2: तो फिर देर कैसी, सुनाइए ना कविता।
3: हाँ, कविता इस प्रकार से है, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की।
2: क्या बात है, इसको आगे मैं कहती हूँ। आज की, कल की, एक एक पल की, ये सफदर हाशमी जी की प्रसिद्ध कविता है। तो श्रोताओं, आज करते हैं बात किताबों के रोचक इतिहास की।
3: जी हाँ श्रोताओं, किताबों का इतिहास या पुस्तकों का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास जितना ही रोचक है
2: जी।
3: आज जो हम सुंदर रंग बिरंगी पुस्तकें हाथ में लेते हैं ना, इसके पीछे लगभग 5000 वर्षों की लंबी यात्रा है। तो विमलेश जी, कहाँ से करें शुरुआत?
2: अजीत जी, इसके लिए हमें दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता में चलना होगा। ये तो बता दें श्रोताओं को कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी।
3: जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता आज के इराक में विकसित हुई थी। श्रोताओं को ये जानकर आश्चर्य होगा कि तब पुस्तकें मेसोपोटामिया में मिट्टी की थी।
2: मिट्टी की, और वो भी पुस्तकें, ये तो बड़ी विचित्र बात है।
3: जी, बात तो विचित्र है ही। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया की पहली पुस्तकें वास्तव में आज की तरह की पुस्तकें नहीं थी, बल्कि वे मिट्टी की तख्तियां थीं।
2: जी,
3: तो विमलेश जी, अब आपकी बारी है ये बताने की कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के निवासियों को क्या कहते थे और वे मिट्टी की पट्टियों पर लिखते कैसे थे।
2: जी जी जी, मेसोपोटामिया के निवासियों को सुमेरी या सुमेरियन कहते थे। ये लोग मिट्टी को गीला करके उसे आज की स्लेट की तरह एक आकार देते थे और फिर उस पर धातु की कील या हम कह सकते हैं नुकीली कलम से लिखते थे
3: जी।
2: इसलिए मिट्टी की पट्टियों पर लिखे वर्णों को पुरातत्वविदों ने कीलाक्षर भी कहा है।
3: जी जी, कीलाक्षर यानी कील से लिखे हुए अक्षर
2: जी।
3: ये तो सचमुच बड़ा रोचक होता जा रहा है। लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि क्या ये मिट्टी की पट्टियाँ टिकाऊ होती थीं?
2: बिल्कुल होती थीं। पहले उन लिखी गई उन पट्टियों को वो धूप में सुखाते थे, फिर उन्हें भट्टी में पकाया जाता था। ऐसी मिट्टी की पट्टियाँ हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह जाती थीं।
3: श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए कि यदि आपको 300 पृष्ठों की एक पुस्तक पढ़नी हो
2: जी,
3: और हर एक पृष्ठ एक भारी मिट्टी की पट्टिया हो, तो
2: ऐसी कल्पना करना ही हमें अपने आप में आज से 5000 वर्ष के पूर्व के काल में ले चलता है। अजीत जी, ये जानना भी बहुत रोचक रहेगा कि सुमेरी लोग इन मिट्टी की पट्टियाओं या क्ले टैबलेट्स पर लिखते क्या थे, जरा श्रोताओं को भी तो बता दें।
3: जी विमलेश जी, ये जानना तो सच में बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि इससे हमें उनकी सभ्यता और इतिहास की बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। मजेदार बात यह है कि उनके द्वारा लिखी गई हजारों मिट्टी की तख्तियाँ आज भी पढ़ी जा सकती हैं।
2: जी,
3: इनमें वे लिखते थे व्यापार का हिसाब किताब, राजकीय अभिलेख, सुमेरी कानून और संहिताएं,
2: युद्धों और विजयों का विवरण और राजाओं की उपलब्धियां, कहानियां और कविताएं। उन्होंने महाकाव्य भी लिखे जिनमें एपिक ऑफ गिलगामेश बहुत प्रसिद्ध है।
3: श्रोताओं, आपको बता दें कि कीलाक्षरों को क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है और 19वीं शताब्दी में ही विद्वानों ने कीलाक्षरों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया भर के संग्रहालयों में ये कीलाक्षर प्रतियां सुरक्षित हैं और वे आज भी हमें आज से 5000 वर्ष पूर्व पुरानी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, शैक्षिक और दैनिक जीवन की जानकारी देती हैं।
2: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी और अब सुनिए आज का प्रश्न जिसका उत्तर छिपा हुआ है आज की ही जानकारी में। प्रश्न है,
3: आज का प्रश्न है, किलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: किलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
3: तो हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप हमारे प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
3: तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है अरावली की कहानी।
2: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में अरावली

0: तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
2: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
2: वाह, क्या बात है
4: मैम।
2: हाँ बेटी,
4: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
2: बिल्कुल कहा।
4: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं। क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
2: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहां कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियां होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
4: जी, पहाड़ी।
0: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
2: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
3: यस मैम।
2: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
3: अच्छा।
2: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
3: अच्छा।
2: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
3: अच्छा, मैंने भी देखा है।
0: आरा और वली यानि अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
5: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
2: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
6: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहां से कहां तक फैली हुई है?
2: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
3: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
0: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
2: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
4: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
0: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
2: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गयी।
6: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
2: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन। बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं जो राजस्थान में ही हैं।
0: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
2: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
3: जी मैम।
4: यस मैम।
2: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
4: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
2: हाँ रिद्धि।

0: बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
1: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
2: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
2: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
2: ओह,
0: अब जैसे जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
3: जी मैम।
2: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
3: बहुत अच्छी लगी।
2: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
3: धन्यवाद सर।
4: धन्यवाद मैम।
5: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
2: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
5: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है जंगल के साथी।
6: इस कार्यक्रम में पशु पक्षियों की भूमिका के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि एकता में ही बल है, बिना किसी आपसी मेलजोल के हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार जंगल के पशु पक्षियों ने मिलजुल कर असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया।
5: जंगल के साथी।
4: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी, चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
7: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: ध्यान लगाकर सुनो सुनो, कान लगाकर सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ, क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
3: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के

0: मन कोठा भाता, हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
2: राम जी, अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना। क्या हुआ?
2: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
2: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
2: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर।

0: मोर ताता थैया नाचे मोर रंग बिरंगा सुंदर मोर ताता थैया नाचे मोर नाचे मोर भई नाचे मोर रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
1: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
1: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
0: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
1: यानी खरगोश, हिरन और मोर।
0: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते,

0: मिलजुल कर रहते।
1: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
0: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
1: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
0: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।

एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम उमंग अभी आप सुन रहे थे। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। दिन के 3:30 हुए हैं। लीजिए अब पेश खिदमत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आइए सुने आबिदा परवीन की आवाज़ में चंद सूफी नगमे।

0: आबिदा परवीन की आवाज़ में चंद सूफी नगमे अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा अगला कार्यक्रम है लोकगीतों का, सुनवाएंगे थोड़ी ही देर में।
1: नमस्कार युवा साथियों, आज शाम ट्यून इन कीजिए 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आने वाले शो युवाणी के साथ, जहां हम जानेंगे कुछ सपने किताबों में नहीं मैदानों की मिट्टी में भी बन सकते हैं। साथ ही बात करेंगे लापरवाही के कारण रोड पर खत्म होती सपनों के बारे में। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे ऐसे विषय पर जो हमारी जेनरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस सुनहरे शाम को सजाएंगे सुरीले गीत के साथ। तो जुड़ना ना भूले मेरे यानी आयुषी झा के साथ 5:02 पर आने वाले शो युवाणी में।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर। आइए अब सुनते हैं कुछ लोकगीत। आज इस कार्यक्रम में सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत। कलाकार हैं शंभू राम और उनके साथी। लीजिए सुनिए उनकी पहली प्रस्तुति।

कार्यक्रम लोकगीत में आप सुन रहे हैं भोजपुरी लोकगीत शंभुराम और उनके साथियों से। अब आइए सुनते हैं इनसे एक पूर्वी

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकगीत में, भोजपुरी लोकगीत शंभूराम और साथियों से। हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में।
1: आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 4 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में सुनिएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से मुख्य समाचार।

0: मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज लोहरदगा के विभिन्न मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को एएसडीडी सूची के कड़े सत्यापन और केवल भारतीय नागरिकों के नाम जोड़ने के निर्देश दिए। रांची के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों में सुस्ती को लेकर प्रशासन को संवेदनहीन बताया। श्री सेठ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आरोप लगाया है कि केंद्र से मिलने वाले फंड के बावजूद राज्य सरकार की उदासीनता के कारण विकास योजनाएं फाइलों में अटकी हुई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड विधानसभा परिसर में राज्य के पूर्व मंत्री स्वर्गीय मन्नान मल्लिक के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। कांग्रेस पार्टी आगामी 21 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर संसद चलो विरोध प्रदर्शन करेगी। रांची में प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी डॉ. सुधा प्रसाद ने बताया कि पार्टी नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिला आरक्षण को देश में अविलंब लागू करने और परिसीमन की शर्त हटाने की मांग कर रही है। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सघन पैदल गश्ती की। थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुस्लिम बस्ती और एस टाइप कॉलोनी जैसे संवेदनशील इलाकों में दुकानदारों और आम जनता से संवाद किया। रांची में आज अभ्यर्थियों ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितता के विरोध में आयोग कार्यालय का घेराव किया। आज सुबह छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने प्रश्न पत्र लीक और सीटों की बिक्री का गंभीर आरोप लगाया है। रांची को अतिक्रमण मुक्त बनाने के नगर निगम के अभियान के विरोध में आज फुटपाथ दुकानदारों ने निगम कार्यालय का घेराव किया। दुकानदारों का कहना है कि बिना नोटिस दिए उन्हें उजाड़ा जा रहा है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक मुख्य समाचार अभी आप सुन रहे थे। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। आइए सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अनुराधा पौंडवाल के युगल स्वरों में। नदीम श्रवण का संगीतबद्ध किया हुआ गाना था, फैज अनवर का लिखा हुआ गीत। आइए अगला गाना अब आपको सुनवाते हैं सिर्फ तुम फिल्म से, अलका याग्निक की आवाज़ में। संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने, गीत रचना है समीर की।

आर्टिकल 15 फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे अरमान मलिक और साथियों की आवाज़ों में। संगीतकार थे अनुराग सैकिया और गीत लिखा था शकील आज़मी ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म दिल तो पागल है का टाइटल ट्रैक। लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ें हैं, संगीत उत्तम सिंह का है और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं अमावस फिल्म का गाना अरमान मलिक की आवाज़ में। संगीतबद्ध किया है असद खान ने और शब्द रचना है जुनैद वासी की। श्रोताओं आप ये गाना सुनिए, एंजॉय कीजिए और फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम से मुझे यानी श्रीति को अब दीजिए इजाज़त। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम जारी रहेगा। कार्यक्रम का अगला भाग सुनिएगा अपनी रेडियो दोस्त पूनम शर्मा के साथ। फिलहाल अमावस फिल्म का ये

0: डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
0: हेलो डॉक्टर।
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: हेलो डॉक्टर।

नमस्कार श्रोताओं, फिल्म संगीत का आगे का सफर आप तय करेंगे मेरे यानी पूनम के साथ, और आप हैं FM 102.4 MHz पर।

श्रोताओं, हमारा शहर जमशेदपुर बहुत ही अनोखा है और यहाँ के मौसम के तो कहने ही क्या। बारिश ना हो तो गर्मी से हाल बेहाल हो जाता है और रिमझिम फुहारें जब बरसने लगती हैं तो फिर यही हमारा जमशेदपुर जन्नत सरीखा लगने लगता है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली, पेड़ पौधे नाच उठते हैं बरखा में नहाकर। तो चलिए हम भी आनंद लेते हैं सुहाने मौसम का। और हाँ, यदि आप घर पर हैं तो चाय की चुस्कियों के साथ आनंद लीजिए, और अगर ऑफिस से घर की ओर जा रहे हैं तो फिर घर तक का ये सफर कीजिए हमारे नाम।

ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में। गीतकार थे आनंद बख्शी और सुरों में पिरोया था इस गाने को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म थी अनजाना। आकाशवाणी जमशेदपुर से श्रोताओं आप आनंद ले रहे हैं फिल्मी गानों का।

मंसिल, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं। गीत लिखा था योगेश ने और धुन बनाई थी आर.टी. बर्मन ने। आवाज किशोर कुमार की थी।

श्रोताओं, हमें पूरी उम्मीद है आप आनंद ले रहे होंगे फिल्मी गानों का और रिमझिम फुहारों का भी। सुनिए ये अगला गाना।